दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: डैडी वेरी जेंटली ग्रैब योर टाइनी फिंगर्स माय चाइल्ड।
1: तुझे मैं चलना सिखलाऊं,
0: एंड स्टेप बाय स्टेप आई टीच यू टू वॉक।
1: कल हाथ पकड़ना मेरा,
0: बट द डे विल कम माय चाइल्ड व्हेन यू विल बी द वन टू होल्ड ऑन टू माय हैंड।
1: जब मैं बूढ़ा हो जाऊं,
0: when I would have become aged and unable to walk,
1: tu mila ko maine paya,
0: having gotten you in my life now,
1: jeene ka naya sahara,
0: I found new hope and support to life।